अपर्च्युनिटी 1900 बार से कुछ सबको अवसर में प्रस्तुत सुविशु अपर्च्युनिटी यस योजना अंतर्गत ग्राहक पाने 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 में र 65 भन्दा बड़ी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 में साथ ही दामी म्यूजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निःशुल्क शर्त र नियमहरु लागू हुने छन् थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np सुबिसु

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: तिमी मसँग लभर छौ, म यहाँ के म यहाँ
2: क्यार न लभ गर्न परिचर बाले खोज्दा केटासँग बिहा र जाने हुन्का।

0: अलग राम रफ्ती है ना फोन वर्षों में ना
1: वारं तो रात भरी वारे थे पराव चुरी व्याचन ता रीचे तो आलू ना पाई है ना बिहान घर पे बाबू फोन ऑप्शन ता
0: और नया नया चीज कुछ है
1: ये चीज तो ये टड़क का टड़क आसुन दे
0: हेरो हेरो
1: आई नहीं मैं अभी क्या
0: नहीं

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: California. Extreme energy drink.
1: ओहो आज दाई हूँ नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से उहै जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिदा हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई ना वहां ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहां तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते BTE CIC RIC जैसिन मशीन फे वहां मिलत
1: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 वो 98-482-80-465

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आए
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, गाना भी बहुत अच्छा रहा है ना सखी। अब सखी कहाँ गई, ले अभी चूनर देखे लगी।
1: बोला थे हो, हम तो सोचन के गाना गाओ थे हो, आप तो हम अपन चुनरी भी देखते रहे ना, आप चुनर उड़ उड़ जाए कहा थी।
0: तो आप
1: तो हम
0: सोचे
1: हमार चुनरी उड़ा है सखी गाओ थे, देखी हमार है कि नहीं है चुनरी का।
0: अच्छा, मतलब आप मजबूती से पकड़े हो कि
1: मतलब हम इधर अपने में व्यस्त हैं तो आप उधर शुरू होगी।
0: तो अब हम का क्या पता रहा है कि हम जैसे कहीं कि चुनर उड़ जाए
1: नहीं, आप
0: कहाँ चुनर का पकड़े हो,
1: आप कहे ना रहे हो, आप गीत संगीत अच्छा, पहले अच्छा। सुनते हैं हम मस्त रहे अच्छा। चुनर उड़ उड़ जाए
0: अच्छा, मतलब तो आप देखत रहे हो कि चुनर, मतलब चुनर उड़ चुनरी
1: तो हाँ वही मैं देखी तरह
0: वही है। तो हम कहें कि सखी कहाँ चले गए, फिर चले गए कहाँ, वही
1: कहाँ,
0: अरे जहाँ चुनर उड़ा हुआ जाता है।
1: अच्छा चूनर उड़े एक बात तो ये है, और
0: अब चारों तरफ हरियाली है रहते है ना सखी।
1: हाँ
0: फिर एक तो फिर मौसम भी एक ऐसा उमंग आई जाती है मौसम में, यहाँ चारों तरफ हरियाली देख के
1: हाँ।
0: तो खुद भी जो है उमंग मस्त हो जाओ।
1: हाँ, और चूनर बस ये मस्त के बात सुन के हमका एहसास हो ही गवा है
0: का?
1: कि हम लोग मतलब गीत संगीत में मस्त रहे।
0: हाँ,
1: और श्रोता आप लोग भी कार्यक्रम में आवे से पहले प्रोमो बजाए कि हम लोग गीत संगीत के तरफ पहले डाल दिया, अगर आ सकी का कहा न पड़ी कि सखी गीत संगीत सुनाओ, पहले सुनाए दी नहीं।
0: वही तो अब कहा नहीं है, जैसे जी के भूख लगत है, अब उका भूख से उके कहे से पहले पहले खाना मिल जाते तो उका शिकायत ही नहीं रहा थे का।
1: लेकिन यह कहते सखी कि जब बच्चा जब तक रोवत नहीं है तब तक दूधो नहीं पावत है, तो ऐसे जैसे जब तक हम लोग कहबे ना तब तक खाना नहीं मिलत है ने?
0: बात तो सही
1: लेकिन हाँ इशारा आ जाता समझ गई हमारे सखी की पहले मतलब
0: आप बोली हो जरूर गीत संगीत खातिर, वही मारे हम सोचन लाओ पहले हम।
1: अच्छा चलो अब तक ख्याल रखा गया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और साथ में प्रावधिक में तो आप हये हो।
0: हाँ,
1: अब आपसे हम लोग ना कहबे गीत संगीत का तो अब किसे कहे जेबे भाई, तो यही मारे कार्यक्रम में हम लोग आए गवा का है हल्ला करते है ना। अब चुनर उड़ उड़ जाए उधर गीत संगीत सुना जा रहा है, लेकिन हम लोग वही में मस्त रहे। और श्रोता आप लोग भी जरूर मस्त रहे, वही का है 1 बजे लग रहा है, आप लोग सोचे हुए जरूर दोनों सखी लड़ते आवत हुई है, तो हम लोग आए गवा का है। और कार्यक्रम घर अंगनामा स्टूडियो में भी आप लोगों के समझ आएगा होगा 1 बजे से 3 बजे तक साथ रहा जी। और बहुत श्रोता हम लोगों का विनती भी करत हैं और कहा भी हैं कि आप लोग कार्यक्रम पूरा लाइव चलावा जाए, तो जरूर हम लोगों का भी व्यवस्था करा जाते है, कोई कारण बस से वो भी नहीं हो पावत है।
0: हाँ।
1: कुछ जैसे हम लोगों के मैनेजमेंट के कारण से भी होते है, कुछ कोई हो टेक्निकल लाइन जी के कारण से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पावत है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करा जाते
0: हैं और आप लोगों के जो मांग है जरूर पूरा।
1: और उनके साथ साथ मांग के एक उपाय भी तो यही रखा गया है सखी कि
0: हाँ।
1: जैसे हम लोग लाइव नहीं कर पावा जाते, लेकिन आप लोग एफएम सुना जाते हैं तो कार्यक्रम तो अभी आप लोग सुन लीन जाते हैं, लेकिन यही हाव भाव के साथ जो हमारे लोग के छोटकरी में वीडियो तैयार करा जाते हैं उसका हम लोग अपने कृष्ण सार के प्रोफाइल से पोस्ट करा जाते हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब में भी जाते हैं और
0: शॉर्ट में से एक छोटा सा वीडियो तरीके से हम लोग टिकटॉक में भी डाला जाते हैं।
1: हाँ मतलब ऐसा कोनो ऐप्स नहीं है जहाँ ये वीडियो न जात हुए, वो ही हम लोगों के बतकही वाला। आप लोगों के गीत संगीत तो लाइव सुनते जावा जाते है, लेकिन उमा गीत संगीत ना रह के खाली हमारे लोगों जो बत कही रहा लड़ाई झगड़ा जो भी आप सोचा जाए है ना, लड़ाई झगड़ा का होता है बस क्षणिक के लिए रहा थे हमारे लोगन के। और आप लोगों से भी तो लड़ाई झगड़ा रहा था, आप लोग फोन इन कार्यक्रम के दिन ना सखी लोग खाली फोन नहीं करा जाते, उके भी लड़ाई है हम लोग थी है ना, तो सखी लोगन आप लोग भी तनिक फोन करा जाए, हम लोग से जुटा करा जाए, तो हम लोग के महीना के अंतिम शनिचर आप लोग जाना जाते कि फोन इन कार्यक्रम रहा था, तो आवे वाला शायद शनिवार हमारे लोगन के महीना के अंतिम शनिचर परी, तो महीना के अंतिम शनिचर कब परी आप लोग जाना जाता है, जैसे महीना के अंतिम शनिचर कोई भी गते परत है तो 30 गते हम लोग के महीना के अंतिम शनिचर परी, उस दिन फोन इन कार्यक्रम रही, आप लोग जरूर हम लोग से जुटा जाए फोन करा जाए। कुछ सखी लोग हमारे बहनी लोग कुछ बिटिए लोग यहीं आए के भी मिल लेती हमसे लोग से, लेकिन लाइव में भी फोन करा जाए बात कही करा जाए और आप लोगों के प्रतिक्रिया और सुना जाते ही महीना के भरपूर कि आप लोग सावन के विशेष कह के हम लोग सावन विशेष कह के कार्यक्रम चलावा जाते हैं, आज भी सावन के हम लोग शनिचर के बैठे हैं, लेकिन हमारे सखी के मूड पिराए लाग है।
0: अरे सखी का बताए, हमारे बहुत सिर बहुत दर्द होता है, मूड बहुत पिरा थे,
1: ये मूड पिराए के कारण से सावन में कुछ थोड़ा सा कमी आएगा है, वैसे हरियाली में हम दूजना कम नहीं है,
0: कम नहीं है
1: हरियर में तो,
0: लेकिन बस थोड़ा सा सिर बहुत दर्द होता है, मूड बहुत पिरा था सखी का बताए,
1: तो क्या करे चाहिए
0: अब चलो व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए, इसके बाद छोटा सा व्यापारिक विश्राम।
1: हाँ, हमारे सखी का थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। अब मौसम है ऐसे है कि कहूँ गर्म कहूँ ठंड रहा थे, जिसके कारण से समस्या आ जाए। तो श्रोता आप लोग भी ना जावा जी, कार्यक्रम सुनते रहा जी। अब इनके दवाई बिरवा कह के हम लोग फिर वापस आवा जाते हैं।
0: हमारे सखी दवाई बिरवा कर जाती है अपने, तो आप लोग गाना सुना जाए तब तक। अभी तो व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाता है,
1: के बाद सच्चाई आदमी के निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी चला जाए विज्ञापन के तरफ।
0: ठीक है,
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौं, कति उपचार गरायौं, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: तब सावन, तो सावन के महीना के फायदा तो हम लोग सबके उठावा गया था।
1: हाँ
0: है ना, झूला झूलियो कि नहीं?
1: झूले झूले अभी तो बाकी है, ये है टाइम। वैसे तो सिर बहुत दर्द होता रहा सखी।
0: तो आपका हम काढ़ा पिया दिया,
1: तू तो काढ़ा तो पिया दियो, थोड़ा आराम हुआ तभी तो झूले रहे।
0: थोड़ा सा पहले ना हम नमक पानी, जैसे करिया नमक पानी जो कहा, तो करिया माने काला नमक।
1: हाँ काला नमक,
0: सेंधा नमक।
1: सेंधा नमक होते काला? सेंधा नमक तो सफेद ही ना होते, मतलब थोड़ा सा मेरे
0: नहीं नहीं, नहीं वही करिया ना जो कहा जाना है वही नमक हुआ। तो उनके पानी भी दिया है शायद, होते है कभी कभी गैस चढ़ जाता है जिसके कारण से मुड़ पीरा लागत है।
1: नहीं
0: ठंडी की वजह से भी हुई।
1: सुनो ना सखी, का हुआ ना कि मतलब अरे कल यहाँ रहा है, कल रहा है तो कहीं गए रहे इनका। अब जैसे प्याज बहुत जोर से लगा रहा है का,
0: अच्छा।
1: तो अब देखो कहा नहीं है डॉक्टर, अपन इलाज नहीं कर पावत है ना।
0: हाँ।
1: तो जैसे हम लोग सबका बतावा जाते हैं और हम ही चुग गए इनका। अब प्यास बड़ी जोर से लगा रहा है, घर पर आए हाँ ठंडा पानी पी लिए
0: बस। हम मतलब अपने मन का ना रोक पावा था,
1: क्या करिए अब जो है गर्म बहुत का लगत रहा है और जाके गर्म, जैसे गर्म के वजह से और प्यास भी बहुत जोर से लगा रहा है। अब घर पर गए पानी पी लिए और तुरंत पंखा मतलब हवा में बैठ गए, तो ई के वजह से मतलब कुछ समस्या लगत है।
0: उमस भी बहुत ज्यादा,
1: हाँ उमस भी रहा है प्यास के महीने। हाँ अब गर्मी के महीना में प्यास तो लगते हैं, लेकिन घाम के माँ आए रहे ना, घाम से आए तो पानी पी लिए, तो वही से हमका कुछ गले में कुछ खसखस लगत रहा है और सिर भी दर्द होता
0: है। परेशान न हो, काढ़ा तो आप पी चुकी हो।
1: हाँ।
0: अब धीरे धीरे सर्दी हो,
1: हाँ, धीरे धीरे
0: ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी परेशान हुई के तुरंत दवाई भी सब ना खाए के चाहिए। अब धीरे धीरे सर्दी हो तो एक दो दिन टाइम लग जाए, और गले में अब जैसे अंदर कफ हो खराश होते है तो ऐसे नमक पानी से कुल्ला है, और नमक पानी गुनगुना पिए से भी, काढ़ा पिए से भी ठीक हो सकता
1: है। और एक तो फिर ये आजकल जो चला नहीं है सखी वायरल बुखार।
0: हाँ तो परेशान ना हो, हम लोग सावन के साथ साथ अभी शायद आज हम लोग विषय वस्तु भी वही लाए हैं।
1: हाँ।
0: कि आपो का फायदा मिल जाए है नी। और इसे जो ये जो गर्म मतलब दमसा कह के एकदम गर्म करत है, वो के बाद पानी भी बरस जाता है, गर्म रहा है फिर ठंडा हवा रहा है, तो इसके कारण से ज्यादा लोग बीमार होए लागे हैं।
1: अब जैसे कि कोई धूप से आवत है अपना काम, जैसे काम करके अपना धूप से आवत है, गर्मी लगत है या सामे के है, तुरंत गर्म के वजह से आए फिर तुरंत नहाए लीन, नहाए के फिर ठंडा पानी पी लीन या हाँ, फिर कोल्ड ड्रिंक पी लीन, जिसे कोई चीज
0: कहा ना जाता है कि तुरंत गर्म से आवा जाए हाँ, तुरंत ठंडा पानी ना पिए,
1: ठंडा गर्म के वजह से
0: तो पहले से कहा जाता है। लेकिन अब क्या होता है आदमी के अपनी इच्छा मन का नए रोग मिलता है, अत्ता गर्म होते जबकि बाहर से हम लोग अत्ता सही के आवा जाते है ने? लेकिन एक दिमाग में का होते सकी कि घरे जाइबे जाते जा ठंडा पानी पीबे, घरे पहुंची बस ठंडा पानी पी, बहरे हम लोग 2-3 घंटा उका सही लिन जाते है, गरम लागत है, घाम में रहा जाते है, मजबूरी काम भी करा जाते है, लेकिन उके सोच एक बनाए रहा जाते है कि ना हो चलो कोल्ड ड्रिंक पी लीन जाए।
1: हाँ।
0: या फिर घरे जाए के खूब ठंडा पानी पीबे, खूब शरबत बनाए के पीबे, मतलब एक सोच जो रहा था वो सोच जाते खंड पहले अपने आप का ही नहीं करा जाते कि थोड़ी देर बैठा जाए, थोड़ा सा मतलब जो अंदर के उमस रहा थे वो निकले, शरीर स्थिर हुए। आहा पहले हमारे लोगों के ध्यान केंद्रित कहाँ रहा था, ठंडा पानी
1: पिए करते,
0: तो जी के कारण से हुए बस वही चीज हम लोगों का नुकसान कर जाता,
1: नुकसान करा
0: कि बहरे तापक्रम अत्ता ज्यादा रहा थे कि परेशान रहा जाते, पूरा शरीर सांस का भी समस्या होते, औड़ा लागत है, पसीना रहा थे, लेकिन घरे जाते खन हम लोग तुरंत ठंडा पानी पी लीन जाते है, जो की हमारे सखी कहते ही ई करहीन से हम लोगों का तुरंत बीमारी लग जाता है, या तो बुखार आ जाता है या तो तुरंत पकड़ ले।
1: हाँ और सर्द और जो है ठंडा गर्म की वजह से सखी इस साइड देखा जाए कि चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारे है।
0: हाँ अब इके मारे की सकी अभी जल्दी रोज पानी बरसत
1: रहा। हाँ, रोज पानी फिर घाम निकल गया,
0: जब मौसम अत्ता बढ़िया ठंड रहा है कि इतना उमस हो लगा,
1: उमस हो लगा।
0: अब आपके आवे वाले महीने में जैसे मान लो कहते हैं भादो कुंवर के गरम, भादो कुंवर के गरम में भी ऐसे रहा तो उमस रहा था, पानी बरसत है हल्का फुल्का, फिर उमस हो लगा था, जिसके कारण से ये बीमारी समस्या ज्यादा फैला था।
1: और सखी पता है जब मौसम बदलत है तब भी समस्या हो जाते, जैसे हाँ। कि जब गर्मी शुरुआत हो लगा थे और एक गर्मी जाए लगा थे, यही तरीके से जाड़ा भी जब शुरुआत होते और जाए मतलब जाए हाँ, लगा थे, परिवर्तन होए में यहाँ भी
0: मौसम नहीं है कि जैसे मान लो आप फुल कपड़ा पहन के गए तो गर्म महसूस होता है, अगर पहन के ना गए तो आपका ठंड महसूस होता है, तो जब समय मौसम बदले लागत है तो के भरोसा नहीं रहा था कि कब ज्यादा ठंड लागे कब गर्म बढ़ जाए, जिसके कारण से हम लोग का थोड़ा शरीर का जो हम लोग के शरीर के तापक्रम है उसका सहन शक्ति नहीं होती
1: ना
0: है कारण से बीमार हो जाते
1: हैं। मौसम की वजह से भी हो जाते परिवर्तन जब होते। तो सखी,
0: हाँ सखी,
1: अब चला जाए हम लोग व्यापारिक विश्राम के तरफ, इसके बाद तो बात बत कही करते रहा जाए।
0: हाँ, करते रहा जाए और आप लोग भी जान गवा गई श्रोता सके कि आज हम लोग यही के बारे में बातचीत करा जी, जिसका हम लोग वायरल बुखार कहा जाता है। वायरल बुखार माने का सबसे ज्यादा उपाय और सबसे ज्यादा रोग पहले क्या होता है, बुखार आई गवा।
1: हाँ,
0: तो इस चीज की बातचीत करते रहा जी, तब तक आप लोग सुनते रहा जाए
1: व्यापारिक विश्राम के तरफ।
0: ठीक है, चलो
1: ठीक है, बात सुनते रहा जाए।
2: एनसेल पैक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: lip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: Beer Dental.
3: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
6: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
5: अच्छा, मने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
6: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
5: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
6: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: सखी आप कहाँ लुकाए जाते हो?
1: हम लुकाए नहीं रहन सके, हम खोए जाए थे गाना मा कि का सही से झूला झूला जा तो पानी के फुहारा कहत नहीं है बहुछार। जैसे गीत संगीत में जैसे भावना में व्यक्त है, अब सखी बहनी ये बात यही है, अब दो चार टना सखी दीदी बहनी मिलके तो जावा जाता झूला झूले बगियन में है नी।
0: तो अच्छा वही में आप खोए गए रहो ना, कि जैसे कि हम लोग भी झूला जाते हैं ना।
1: हाँ, ऊपर से तरी सिम सिम सिम जोन बौछार पानी होए, ऊपर से हम चाहे लोग कई सखी लोग झूला झूला जाते हैं और वही में खाए पे वाला चीज भी रखे रहा।
0: सखी हम हो रहे हैं उमा, आपके सोचे मा
1: काश ऐसा होत कह के हम कहे है ना।
0: काश ऐसा
1: हम झूलित नहीं
0: रहे, हम रहे ना, मगर
1: झूलित नहीं रहे, अभी सोचित रहे काश ऐसा। अब बगिया कहाँ जावा जाए, फिर दो चार जना सखी बटोरा कैसे जाए। जानते हो आजकल के समय ऐसे कि एक तो बलावत माँ और सबका बटोरत बटोरत कहूँ ना कहूँ से काम है कैंसिल हो जाते हैं।
0: बहुत बहुत मन करत है नहीं झूले के। अच्छा सखी
1: चला जाए सखी, हम इन लोग दो जना
0: और कहूँगा सखी मिल जाएगी।
1: सारी सखी तो कहूँ ना कहूँ हेरा जाती का, कहूँ कहीं आज ये काम है। अब काम के व्यस्तता सबके है।
0: हाँ सखी, बात है घर के काम से की का फुर्सत रहते है
1: बस, लेकिन अपने कतिर हम लोग थोड़ा समय अपने कतिर निकाल
0: समय भी निकाला जाते। और पता है सखी, जैसे और भी सखी अगर मिल जाई है तो जैसे का होती एक सखी इधर बैठे एक इधर और बीचे में जो बैठे बस जैसे जो मतलब
1: पकाइन मार के और जोर से मतलब हमरे सपना में सपनम जुटी गई।
0: हमका भी बड़ा निक लागत,
1: बड़ा निक लागत,
0: बड़ा निक लागत है। तो चला जाए,
1: चला जाए, अब अभी नहीं चल सका जाता है, अभी हम लोग कार्यक्रम में बैठे हैं। उधर तो ध्यान दो, बुलाई क्यों का
0: नहीं नहीं बुलाने ना, अब का करी बातें ऐसे रहा है कि अब भूल बचपन
1: मतलब अब आपका आएगा कि मतलब चले खे तो चले खे, लेकिन अभी तीन बजे तक नहीं जा सका जाता, तीन बजे से तो हम लोग जावा भी ना जाए, लेकिन झलुआ जरूर झूला जाए,
0: जरूर
1: आप लोग झूला जाए। कहे से सावन के झलुआ भाई विशेष रहा थे और सावन में झलुआ हम लोग सखी हम लोग कहूँ जावा जे झलुआ जरूर झूला जाए, झलुआ डाला भी जाए भाई। बगिया कहा था तो बगिया भी तो ढूंढे पड़ा, क्या करा जाए, आजकल बगिया भी नहीं मिला था सारा बिरवा।
0: आम के बगिया मिले तो बहुत अच्छा रहा था नहीं, आम के बगिया में मतलब।
1: हाँ तो अब आपका हम ले चलबे बगिया माँ और झूला झुलाई के लेबे। ठीक है
0: ठीक है, तो चलो चलो सखी अब 2 बजे के टाइम।
1: हाँ टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद हम लोग फिर जावा जाए, थोड़ा स्वास्थ्य के जानकारी भी लिया जाए। कहा से इस साइड के मौसम में भी तो बचे पड़ा, पहले नीक रहा जाए तब तो जावा जाए झूला झूले।
0: हाँ,
1: ऊपर से पानी में भी भीजे की इच्छा है, क्या पता पानी बरसे फिर भीज जाओ तो फिर बीमार पड़ जावा जाए।
0: ठीक है तो फिर चला जाए
1: चलो।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में ही हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: toile ponija. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तहदिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
5: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथ ही फ्री डेलिभरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
4: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
5: सम्पर्क 97051148 70।
4: सोफा हब नेपालगंज,
5: विश्वास में नंबर 1,
4: क्वालिटी में सबै भन्दा बेस्ट।
6: फिर्ता, क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नुभयो त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: तो सखी
1: हाँ सखी
0: टाइम चेक के बाद गीत संगीत सुनोते हम लोग आवागा बोले चूड़िया हाँ, कंगना वैसे तो चूड़ियों कंगना बोलत भी है हाँ बोलत है खनखन आवाज आवत है
1: बोलत भी है उनका बोले में टाइम न लगी है अगर जहाँ दुई कंगन और कड़ा हुई है और जहाँ ऐसे ऐसे लगी है बस बोले लगी है मुंह से ना बोलिए बस ये है कि इनका चूड़ी
0: उनके अपन भाषा
1: हाँ उनके अपने भाषा रहते चूड़ी के और इस शायद सावन के महीना में यहाँ चूड़ी ज़्यादातर चूड़ी कड़ा बोलत है ना
0: हाँ ये के मारे के हरा चूड़ी के जो बहुत नहीं है
1: हाँ।
0: कि हरे चूड़ी पहने के चाहिए मेहंदी लगावे के चाहिए तो अब सबके हम लोगों के आदत का रहा थे कि सेट मिलावे लगा जाता तो सारा चीज हरे पर हरे हरे पर चले जावा जाता है ना
1: और पता है सके जैसे कि मान लो अब कहीं जाना है अब जिसे कोई कोई और भी कलर के कपड़ा पहन लेते हैं मगर चूड़ी वही रहते हैं
0: हाँ तो सावन भर तो हरे चूड़ी पहनत भी है और चारों तरफ हरे रे हरे भी तो रहते है लेकिन ये महीना में आंखी के ज्योति के लिए बहुत बढ़िया भी रहा है कि कहा से जब हरा चीज ज्यादा देखो तो कहते हैं आंखी के ज्योति भी शीतल रहा है
1: शीतल रहा है और जिंदगी में भी हरा भरा ही रहा है।
0: हाँ तो ऐसे कहते जो हमारे लोगों के दूसर समस्या बातचीत करा गया है कि अब हरे देखते क्या होते पानी के फुहार आवत है पानी बरसत है आदमी पानी में भीज भी जाते अच्छा भी लागत है कहे से रहा था पानी बरसा आदमी भीज लेते नहाए लेते
1: लेकिन अच्छा तो लागत है सखी बाद में वही सजा हुई जाते
0: हाँ लेकिन बाद में जब थोड़ा समस्या का होता जब शरीर के जो इम्यूनिटी पावर रहा थे अगर उस क्षमता ना सही पाई तो फिर हम लोग का बीमार कर देते और ज्यादातर इमा शिकार को होते छोटे बच्चे और ज़्यादा जो बुजुर्ग हम लोग के जो बुजुर्ग हैं मातारी बाप बाबा दाई लोग इन लोगों का ज़्यादा समस्या दिखाई लगा था अभी मैं कह रहा था कि शरीर में ज़्यादा थकान आ जाता जब नहाए लो या कोई कारण से भीज गयो तो पहले तो सर्दी पकड़त है नहीं अब बच्चन के भी देखो कत्ता कहत नहीं है सखी जैसे 102.2 जब तक डिग्री बुखार आएगा तो जानो कि ये वायरल बुखार शुरुआत होई गवा तो बुखार के तापक्रम भी इतना ज़्यादा एक के चक्कर बढ़ जाते 102.2 डिग्री 101 डिग्री जो बुखार रहा थे ये हम लोगन का थोड़ा डर लग जाता है
1: कि
0: थोड़ा मेंटली दिमाग में भी असर पड़ सकता है शरीर का एकदम भी हो सकता है
1: शरीर का एकदम टूट देते तोड़ देते
0: थकान इतना रहा था कि आँख से आंसू रुकते नहीं है शरीर पूरा टूट के फिराए लागत है
1: तो दर्द होने लगा
0: शरीर के ये लक्षण होते इस साइड के वायरल बुखार मतलब वायरल माने वो तब पहले शरीर ठीक ठीक रही इक्कासी आप पौड़ियो आराम करियो जहाँ 1-2 घंटा के बाद झपकी के बाद उठियो आपके शरीर में बुखार चढ़ जाते तो दर्द होने लागत है तो ये 81 मतलब वायरल की हवा पानी के हम लोग के रहन सहन से हम लोगों का बुखार आ जाता है सर्दी लग जाते है ये सब चीज़ें मूड ज़्यादा हद से ज़्यादा पिराए लागत है तो ऐसे में शरीर में दर्द के और शरीर में कमजोरी और मूड पिराप और जैसे हम कह सकी कहीं ना गले में खराश हो जाता है खसखस हो लागत है ये गला में खराश हल्का हल्का खांसी जुकाम है नी आँखी में जलन आंसू ना रुकब और साथ साथ क्या होते कि
1: हल्का हल्का ठंडी लगना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे ठंडी तरह लगा
0: हाँ ठंडी भी लगा था शुरुआत में क्या होते कि ऐसे चीजन का हम लोग पहले वास्ता नहीं करा जाता है लेकिन जब बुखार हद से ज्यादा चढ़ जाते है 101 डिग्री 102 डिग्री उस समय हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि अब क्या करा जाए लेकिन इसे बचे खातिर भी क्या होते कि पहले हम लोग का कैसे बचे के चाहिए का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए अब ज़्यादातर तो हमारे लोगों के खान पीन से जुटा रहा था रहन सहन से जुटा रहा था और उसके बाद हमारे लोगों के कत्ता रेस्ट करेगा कत्ता आराम करेगा कत्ता काम के लोड लियागा उससे भी जुटा रहा था तो शरीर में जितना अगर यूनिटी पावर है वो अनुसार काम करेगा वो अनुसार हम लोग डाइट खावागा खाना खावागा तब तो हम लोग बैलेंस मिला ही लियागा लेकिन अगर शरीर में यूनिटी पावर कम है हम लोग खाना नहीं खावा जाता समय से सही खाना नहीं खावा जाता है और भूख लगा तो कुछ भी खा लेन जाता है कुछ भी मतलब जैसे मान लो आजकल चाउचो है चाउमीन है बर्गर है मोमो है इस सब चीज़ें चाट है पकौड़ी इस सब चीज़ें से क्या होता है कि पेट तो भरेगा स्वाद भी मिलेगा लेकिन शरीर का वो पावर नहीं मिलता है तो जिसके कारण से कहा तो जाता खाए रहे हाँ पेट भरा रहा चलो पेट भर गया चलो फिर काम करा जाए तो काम करत करत जो शरीर के अंदरूनी भाग है वो हम लोगन का धीरे धीरे दबावे लागत है वही गैस के रूप में अथवा उके जो चिकनाहट उके जो करू खट्टा के रूप में कहीं ना कहीं से हम लोगों के हड्डी हम लोगों के लीवर या हम लोगों के शरीर में अटैक करके हम लोगों का वो बुखार के रूप में निकाले लागत है ज़्यादा पानी बरसा वो भी हम लोगों का अब नुकसान कह दीस कहत नहीं है जब शरीर में इम्यूनिटी पावर जब ताकत रहा थे तब बीजा करो, काम करा करो, नया असर फरत है। एक्कासी कहाँ भी जाते हैं, हमरे तो ना बीज जाते ना चढ़ाते बुखार होता,
1: ना चढ़ता, हमरे तबियत ना खराब होता,
0: हमारा ना खराब होते, लेकिन लापरवाही कर रहा है वही चीज का। हम लोग शांत तो बनावागा लेकिन लापरवाही करा जाता तो
1: लापरवाही करे
0: फिर हम लोग भी वही चीज के शिकार बन जाए थे। तो सखी ऐसे यही जानकारी हम लोग, अब कैसे खान पीन करा जाए, नहीं कैसे देख रेख करा जाए और अपने आप का कैसे बचावा जाए। तो गर्मी के जो हम लोग के गर्मी के वायरल बुखार है इससे बचे करते, तो सबसे पहले हम लोग दूषित खाना से बचे पड़ा। और दूषित खान पीन से जो हम लोग बचा जाते हैं तो ही हम लोग का जो ड्राई, जो हम लोग के जो ज़्यादा ड्राई फ्रूट रहा था, जो तेल वाला चीज़ रहा था, मसाला वाला चीज़ रहा था, उससे हम लोग का बचे पड़ा। कहा से एक तो गर्मी में निकला जाता, हद से ज़्यादा गर्म रहा था, तो वो क्या कहते हम लोग का शीतलता खाना खाए पड़ा, सादा खाना है नी। और भी वही जानकारी तो आपों का है ना,
1: हाँ?
0: कि अब ठंडी गर्म में शीतल खाना, और खाने से पहले हम लोग चर्चा भी किन जाते कि सलाद खाना ज़्यादा खावा जाए। अब सलाद में मूरी है, गाजर है, खीरा है नी, चुकंदर
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ सखी, वो तो सब कुछ है, लेकिन थोड़ा टाइम के तरफ भी ध्यान दो।
0: हाँ तो ध्यान का है, तो आप जिधर चला जाए हम लोग उधर चलक तैयार
1: है। बतवा ढलियो का
0: तो चला जाने, किधर चलियो
1: अभी बात करा जाई,
0: किधर चलियो आप,
1: उधर चलबे
0: किधर
1: उधर
0: अब उधर चले के या इधर चले के,
1: व्यापारिक
0: विश्राम के तरफ,
1: वही हम चुपान बैठे हैं कि अब हम
0: चुपान बैठे से कहा, हुकारी तो अब भर रही हो ना,
1: तो अब हम बोली तो और बात भरते जाइए और व्यापारिक विश्राम के टाइम भी चला जाइए।
0: चला जाए व्यापारिक विश्राम के तरफ, फिर जानकारी लेते रह जाए।
1: बिल्कुल,
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
4: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 5 77, 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
5: भर्ना खुल्यो
6: एस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
5: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
6: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जिपिए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
5: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
6: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल एयरलाइन्स रिसोर्ट क्रूज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस फूड एन्ड बेभरेज इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान
7: बीआईटीएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन सफ्टवेयर डेभलपर आइटी म्यानेजमेन्ट डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रका लागि बलियो आधार
6: बीबीएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम बैंकिङ व्यवसाय लेखा वित्त मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन वित्त बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार
7: बीएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क गैर सरकारी संस्था एनजिओ अस्पताल विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर समाज सेवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर
6: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग एयर कन्डिसनर एसीको सुविधा समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श
7: नोट बीएचएम र बीआईटीएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड फोन नम्बर 081-532-07 र 081-535-602 इमेल blc.npj@gmail.com वेबसाइट brightlandcollege.edu.np
1: आज म एकदम खुसी छु
8: हैन आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त
1: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो म त भोलि नै बाबालाई भनेर जान्छु
8: ए हो र ल ल भन न त तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ हामी पनि जानु
1: ल सुन त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बीबीएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति एजुकेसनल टुर सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन मोटिभेसनल क्लास आइसिटी क्लास एसी क्लासरुम इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट क्रिकेट मैदान बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप क्यारियर काउन्सिलिङ जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन् यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरेँ अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो
8: हो रहेछ एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु
1: ल सुन त्यसो भए 98580-40388 98-045-086-26 र 98580-85-040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है
8: ल ल हुन्छ हुन्छ ल
9: नमस्ते दाई
10: नमस्ते नमस्ते धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ
9: विदेश नाटेको दाई
10: धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ
9: विदेश नाटेको दाई पोर्सेस

0: सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलीजुली मेडिकल हल, इदगाह रोड, नेपालगंज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
1: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414169।
4: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
5: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
4: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
5: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे के साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
4: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
5: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं, हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: अब देखो ना कार्यक्रम की हम लोग अंतमा भी पहुँचे लागे हैं एकदम।
1: अंतमा पहुँचे लगा गया है, और अंतमा थोड़ा बहुत बात ये बाकी है कि हम लोगों का अब जैसे वायरल बुखार जो लागत है या जो गटे खसखसात है सर्दी लागत है, उससे घरेलू उपाय से बचा कैसे जाए, आप कुछ उपाय हम लोगों का जानकारी बताओ एक परा। जैसे कि घरेलू इलाज का है कि जब हम लोगों का बुखार आवत है, फीवर आवत है, तो मध्यम स्तर से बीमारी का माना जाता है। कैसे बुखार आते हैं, शरीर दर्द हो लागत है, जिसके कारण से अब जैसे जैसे ज़्यादातर खसखसात है, गटई का है, तो सबसे पहले हम लोगों का उके बचा खातिर कि तुलसी पत्ती के पानी गुनगुना है नी।
0: हाँ।
1: और अरे सबसे पहले
0: भी होते
1: हाँ सबसे पहले कि खसखसा हटे खातिर सेंधा नमक के पानी है नी। और उके बाद में हम लोग काढ़ा, अब काढ़ा में का है कि हर्बल चीज सब चीज़ डाल के हम लोग काढ़ा बनावा जाता है, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, ऐसे चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जो गर्म करत है हम लोगों का, ऐसे चीज़ें में डाल के और काढ़ा बना के पिया जाता है। अब काढ़ा के जगह का होते ज़्यादा कड़वा हो गवा, स्वाद नया आवा, पी नहीं मिलत दवाई तना, लेकिन अगर एक गिलास पानी चढ़ावा गा तो का जरा के आधा बनावे पर। अब वहाँ चीनी हम लोग का नुकसान करत है, अगर आपको हल्का मिठास करे हो तनि स्वाद से बनावे तो आप गुड़ के प्रयोग कर सका जाते हैं, गुड़ के काढ़ा पी सका जाते हैं। और ज़्यादा पानी पिया जाए शरीर में वायरल के वजह से, जो शरीर के तेजी से जो हम लोग के तापक्रम होता है जिसके कारण से पानी की कमी पड़ जाती है, तो पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पेक पड़ा। और जैसे जाड़ा है, सर्दी लाग है, तो हल्का गुनगुन पानी आप पी सका जाता है, और दिन भर पर्याप्त मात्रा में जैसे पानी पेक जरूरी है। और जैसे मान लो तरल चीज़ के प्रयोग ज़्यादा करा जाता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खावा जाए तो जैसे मान लो दाल, दाल के प्रयोग जरूर करा जाए, कैसे वो रसीला रहा थे है नी, तरकारी भी ज़्यादा मर मसाला न डाल के सादा बनाए के रसीला चीज़ प्रयोग कह के, जो कि हम लोग शरीर का नरम बनावे और रसीला प्रदान करे, ऐसा चीजन से खावा जाए, ज़्यादा भीड़ बना जावा जाए है ना, ज़्यादा पसीना वाला एकदम घाम में काम ना करा जाए, काम करा जाता है जैसे हर, लेकिन पहले शरीर का स्वास्थ्य बनावे पड़ा। और सबसे पहले तो हम लोग का तला भुना चीज़ें वर्जित करे पड़ा, और
0: सादा खाना खाओ
1: है ना, इम्यूनिटी पावर वाला खाना, सवेरे आप जैसे चना के दाल भिजोए दिन जाए, मूंग के दाल भिजोए दिन जाए, और उसका फिर दूसरे दिन जब हम लोग कपड़ा में बांध के रख दिन जाते हैं कुछ उमा, तो उमा अखवाए जाते हैं, अंकुरित कहा जाता है जी का, तो अंकुरित दाना का हम लोग सवेरे नाश्ता में प्रयोग कर सका जाता है। उमा काला नमक डाल दिन जाए, उमा गाजर काटा जाए, मूरी काट दिन जाए, और जैसे गैस्ट्रिक की समस्या है तो आप कच्चा लहसुन दो तीन जवा उमा महीन महीन काट सका जाता है, हल्का अदरक डाला जाए, तो लहसुन जो कच्चा होते हम लोगों का बहुत जल्दी गैस्ट्रिक से निवारण मिलत है। तो ये सब चीज़ें हैं वायरल से बचे खातिर, सबसे पहले हम लोगों का वायरल से बचे खातिर ज़्यादा भीड़ में मतलब बचे पड़ा, पसीना के ज़्यादा काम ज़्यादा अगर करा जाए तो पसीना से काम से हम लोगन का समस्या हो जाता है। और उससे पहले तो गर्मी तो है ही है, तो नमक पानी से गरारा करा जाए और पौष्टिक आहार लिया जाए, तुलसी अदरक साथ के जैसे सेवन करा जाए। और एकदम जरूरी सूचना का है कि जैसे हद से ज़्यादा फीवर और 102 बुखार ना उतरत है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लिया जाए,
0: जरूर लिया जाए।
1: अब क्या होता है आयुर्वेदिक चीज़ें थोड़ा देर से हम लोग का फ़ायदा करा था, लेकिन 81 जो बुखार आवत है 102 डिग्री 101 डिग्री वो हम लोग के शरीर के खातिर घातक हो जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग तुरंत डॉक्टर के संपर्क जाए जरूरी रहता है। लेकिन उससे पहले अगर आपका लक्षण आवा, खसखसाहट है, थोड़ा नाक बहात है, सर्दी तना लागत है, मूड हल्का पीरात है, तो आप ये घरेलू उपाय हम लोग पहले से अपना ऐसा कहा जाता है।
0: हाँ हाँ, जैसे जो थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का है तो आप लोग पहले से परहेज किया जाए या इस चीज अपनावा जाए इस चीजन का, तो हम लोगन के यहाँ जो है ये बीमारी पकड़े में जिसे पकड़ीबे ना करिए ठीक हो जाइए है ना। अच्छा
1: हाँ, कैसे पकड़े तो बीमारी वैसे भी कहा जाता है ना कि हम बीमार ना हुई भाई, पानी भेजे तने इसको बीमारी,
0: हाँ, मतलब लापरवाही ना करा जाए है ना। तो अब क्या करा जा सके,
1: अब क्या करा जाए, नजदीक आएगा कार्यक्रम के नजदीक आएगा, नजदीक नजदीक जो आप कहा तो नजदीक से अब हम लोग का दूर जाए पड़ा, विदाई लेक पड़ा है ना।
0: अब हमारे कैसे काम होता सखी, अभी है कि घड़ी के सुई ना रुका था तो हम का करें,
1: बस उसका पकड़ के रख नहीं सका जाता। फिर भी हम लोग वादा करा जाते ना कि हर हफ्ता आप लोग जाना चाहते हैं कि 1 बजे से 3 बजे तक, तो आप लोग देखा जाते हुए घड़ी की हाँ अभी खत्म होने वाला है, तो जरूर आप लोग ऐसे कार्यक्रम ध्यान से सुनते रहा जाए। और फिर हम लोग अगले हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ। और विषय वस्तु का जैसे कुछ श्रोता आज भी फोन करी नहीं कि फोन इन कार्यक्रम है कह के, माफी चाहा जाता है आप लोगों से। महीना के अंतिम शनिचर के फोन इन कार्यक्रम रहा थे और वो दिन आप लोग फोन करा जाए, आपके फोन के हम लोग का इंतजार भी रहा था, स्वागत भी करे तैयार रहा जाते। लेकिन का होते कि हम लोग एक तनी जगह जगह बांटा गया है कि कौन कार्यक्रम कैसे करे है, तो महीना के अंतिम दिन पूरा निचोड़ हम लोग फोन द्वारा करा जाते है। तो जरूर श्रोता अगर आप लोग फोन करा जाते हैं तो माफी चाहा जाते हैं और अगले हफ्ते जरूर फोन करा जाए, यही कहते यही जानकारी देते। अब हम लोग विदा लिया जाते हैं। तो संपूर्ण श्रोता आप लोगों का हार्दिक मंगल में शुभकामना और सावन ऐसे मनौते रहा जाए। और विदाई देश पहले हमारे सखी का धन्यवाद आशीर्वाद जरूर दिया जाए कि ठीक भी हो जाए। ये संगीत सुने
0: ठीक हो गए, बस बातें सुन के ठीक हो गए, काहे कि इतना अच्छा बताया हो आप ना, परहेज करें बस सुन के
1: ठीक है। ऐसे ना आप लोग ठीक हो जावा जी, कार्यक्रम सुनते रहा जी, जरूर आप लोग का सब समस्या हो तो जरूर ठीक हो जावा जी। तो यही कहते हैं हम लोग विदा लिया जाते हैं। नमस्कार, राम राम, शुभ दिन।

0: से तेरा।
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बियर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
0: फोन नम्बर 081-532-375।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
4: नींद
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848-20-697, 9858-23-697 और 9814-83-697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ, संपर्क नंबर 9769411786, 9822-24-92-377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
8: Back to back.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी